0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 मेगाहर्ट्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: 6.9 को शानदार डिस्प्ले, AI पावर्ड कैमरा, 3 वर्ष को वारंटी सहित Redmi A7 मा 5200 mAh तथा Redmi A7 Pro मा 6000 mAh पावरफुल बैटरी को साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्न बारम्बार
1: सबैको मन छुने
2: रेडियो भेरी FM।

0: यही जेठ 30 गते शनिवार को दिन
1: सुपर पोलिक्लिनिक एंड डायग्नोस्टिक सेंटर प्रणाली सुर्खेत में बिरनोस कान उपचार केन्द्र फुलटेग्रा नेपालगंज में कार्यरत नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर आनन्द कुमार झा द्वारा सशुल्क बिरामी जाँच हुने जानकारी गराउँदछौ।
2: विशेषज्ञ डाक्टर द्वारा जाँच हुने समस्याहरू

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 मेगाहर्ट्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी